नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी आपके साथ और इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं स्टूडियोज में। आज का दिन बहुत प्यारा दिन है और देयर इज अ लॉट ऑफ गुड सनशाइन आउट देयर आफ्टर मेनी मेनी डेज ऑफ रेन। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अपना ख्याल रखेंगे। और इस वक्त ब्रिस्बेन में 9:05 हो चुके हैं, बाहर का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्यों कोई बात नहीं कर रहा है इस प्रोग्राम पे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ लाइव स्टूडियो में, लेकिन फिर भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बुखार है, खांसी है और सर्दी भी है, लेकिन फिर भी आना पड़ता है, जो इतना पैशन है हमारा रेडियो का। और ताकि हम आपके साथ अपना म्यूज़िक, अपनी पसंद की म्यूज़िक शेयर कर सकेंगे, तो दोस्तों डटे रहिए हमारे साथ। बहुत सारे अच्छे गाने हैं आपके लिए, और लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि पता नहीं मेरी आवाज़ कहीं खो चुकी है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। रजनी मैं हूँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम चो, गनी खम्मा, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सारे सुनने वालों का प्यार भरा नमस्कार रजनी की ओर से, फोई बी की तरफ से, और हमारी पूरी फैमिली जो फोई बी रेडियो स्टेशन में है, आप के सब आभारी है जो हमारे साथ ट्यून किए हैं। और

ये संदेश ब्रेस्ट स्क्रीन क्वींसलैंड की ओर से है। स्तन जांच हर दो वर्ष में कराने की सलाह दी जाती है और ये 50 से 74 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। नियमित स्तन जांच आपका जीवन बचा सकती है क्योंकि इससे स्तन कैंसर की शुरुआती लक्षणों का समय पर पता चल सकता है। हम 40 वर्ष की महिलाओं तथा 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए भी मुफ्त जाँच उपलब्ध कराते हैं। आपको डॉक्टर की रेफरल की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता होने पर अनुवादक की व्यवस्था भी की जा सकती है। अपॉइंटमेंट के लिए 1320 पर कॉल करें या breastscreen.qld.gov.au पर बुक करें। क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन द्वारा अधिष्ठित प्रायोजक।

अजीब बात यह है, मैंने अपने छोटे भाई को कभी देखा ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं वो दिखता कैसा है, लेकिन एक बात का यकीन, उसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी होंगी। एक्चुअली मुझे लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, शांत, सुशील, शरीर, डिसिप्लिन। पर मेरा दिल कहता है मैं उसे देखते ही पहचान लूं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण।

जी हाँ दोस्तों, हमारा एक घंटा तो हो चुका है या आने वाला है, 10-15 मिनट बाकी है और मैं इस वक्त आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती आज की प्रोग्राम पर, लेकिन बहुत काफ़ी बुखार है और सेहत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगले हफ्ता ज़रूर मुलाकात होगी, तो सुनते रहिए दोस्तों।